0: 아니 다 가글롬바 총주 디나다 도츠등 잔등 만다는 누누 다 토가 주운디 다 세라 세지메케 치그제 세지메케 셰르제 세지메케 더그다 포카 세지메케 더가 참마 카르누이다 다탕근디 총속토가 용니 좀 쳔드무기야
1: 그래 가르성네 데로와르트 다 셔츠 스무즈게 탑타
0: 다 파츠 가르성 테랑기 완디 다 총지게 셰카 파츠 다 총동니 좀 쳔드무스
1: अरे तमु नमा निने समान दगोगे दना हचर समाज सोजोगे
0: ता पाचे नमुजगी तो छोना वाकम दण जमे के दोच
1: अरे देवा के तं ट्रिप सोच ज क नेथने के नेठली ता सोंग सोंसो टे सों दि ता योंगना ता माओ आनन जि कंदि क निया छमु थंजर साम
0: देता न तेरा न का खिसिम दंग ज को तेना ता रंगिन छोना रा ता थतों ओ तेना ता दे योंगना अंद छों छों ज के काट छिम बोज क मचिक ᱟᱱᱫᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱮᱪᱩᱨᱟ ᱡᱟᱝᱠᱮ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱛᱮᱛᱟᱡᱩ ᱟᱱᱫᱮ ᱱᱤᱭᱟᱡᱟ ᱪᱟᱛ ᱭᱟᱢᱥᱮ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱛᱤᱦᱟᱱᱤᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱮᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱚᱠᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱱᱛᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱭᱚᱱᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟ ᱡᱤᱢᱮ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱞᱤᱱ ᱫᱮ ᱜᱟᱱᱩ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱ ᱢᱟᱝᱟ ᱟᱡᱜᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱭᱩᱝᱜᱮ ᱡᱟᱝᱠᱮ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱚᱨᱠᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱛᱚᱜᱚᱛ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱟᱡᱤ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱚᱝᱫᱚ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱫᱩ ᱜᱮ ᱱᱤᱥᱮᱱᱴᱟ ᱢᱟᱝᱤᱱ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱ
1: ᱡᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱠᱤ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱮᱨᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟ ᱨᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱥᱤᱜ ᱵᱤᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱚ ᱛᱮᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱣᱨ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱴᱨᱤᱯᱩ ᱥᱩᱪᱤᱥ ᱜᱮ ᱛᱷᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱟᱱᱡᱤ ᱵᱟᱥ ᱜᱮ ᱛᱷᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱩ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱢᱚᱥᱴᱤᱥ ᱜᱮ ᱛᱟᱵ ᱫᱤᱥ ᱜᱮᱱᱟ
0: ᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟ ᱧᱤᱛᱩᱝ ᱪᱮᱴᱜᱤᱞᱚ ᱛᱟᱯᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱛᱟᱢᱩᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱪᱤ ᱥᱚ ᱥᱚᱨᱡᱤᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟ ᱠᱮᱢᱜᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱭᱱᱟᱨᱟ ᱥᱚᱨᱡᱤᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱵ ᱥᱟᱥᱩᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱚᱠᱩ ᱥᱟᱥᱩᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱤᱯ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱩᱢ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱛᱟᱢᱩᱨᱤ ᱛᱩᱢᱩᱡ ᱦᱤᱱᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱱᱤ ᱱᱤᱠᱣᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱮᱜᱨᱮ ᱡᱟᱜᱡᱩᱢᱟᱱᱤ ᱪᱟᱝ ᱪᱮᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱡᱟᱝ ᱱᱤᱠᱣᱟ ᱪᱟᱝ ᱛᱩᱢᱩᱡ ᱡᱚ ᱢᱟᱛᱩᱢ ᱱᱤ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱᱫᱤ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱫᱮᱛᱟ ᱠᱚᱨᱠᱩᱢ ᱫᱚᱢᱚᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤ ᱫᱟᱱ ᱫᱮᱪᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱛᱷᱩᱱᱡᱤ ᱢᱟᱨᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱚᱪ ᱜᱨᱮᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱵᱞᱩᱢ ᱜ ᱛᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱱᱟᱱᱫᱩ ᱛᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱩᱱᱩ ᱡᱮᱢᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱛᱚ ᱪᱤᱠᱩ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱧᱤ ᱥᱮᱱ ᱛᱚ ᱛᱚᱵᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱥᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱫᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱛᱷᱩᱱᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱱᱫᱩᱢ ᱜ ᱪᱷᱚᱱᱪᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱟᱵᱡ ᱟᱱᱤᱱᱤ ᱧᱚᱪᱩᱝ ᱠᱷᱥᱢᱱᱤ ᱥᱮᱨᱪᱩᱝ ᱛᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱤᱪᱩ ᱛᱟᱱᱫᱩᱢ ᱜ ᱠᱮᱢᱜᱤᱞᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱤ ᱜ ᱞᱮᱢᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱱᱫ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱚᱱᱚ ᱛᱤᱡᱤ ᱥᱮᱥᱮ
0: ᱚ ᱭᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱮ
2: रेटु बनांपा चोंसुप तारपलक सचिनदर नेमबप शिवा तंगतन दालतंगी रोंडु मांसु तव संगिना सागनि रंग थोनखों गर गेसन द वेचली दालतंगी थोनजि साचनी द थोनजि साचिंग लामखा तेतिन दालतंगी जोरसिक लामखा जगन यकोनंद कारसन तेरंग वंडल साकलर्चि ग थमंग कैचिस गर तेन तेरंग लेमसन दि नंगा सोलोन डेमखलन दे सोंग दालतंग सोलोन डेमखल क सानि ग खेलीपा तप की खर्ची खेली छ साठी थोंजि कंग कंग साठी युक अतला सुखा मंगपुज ग डेमते नो ग निसला ति ओना आता न्यामली खंग तंग तनी उंसला सुखा मंगपुज ग छंग ना सानि रंग ग काम खा ग थोंजि शुरा ओमा ग थोंजि ति हान छि के इंग ना आता लोगर ग नमताव दला सुखा मंगपुज ग लेनु इ दल तंग आता शांस ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱴᱷᱚᱢᱨᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱡ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱛᱞ ᱠᱷᱨᱡᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱡ ᱜᱟ ᱴᱮᱴᱩ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱠᱚᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠ ᱥᱮᱨᱛᱷᱚᱭᱚᱱ ᱭᱮ ᱛᱷᱩᱠᱚᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱢᱟᱢᱚ ᱢᱟᱝᱥᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱚᱨᱥᱤᱠ ᱞᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱥ ᱪᱚᱪᱚᱱ ᱫᱮ ᱭᱤᱝ ᱡᱚᱜᱱᱫᱜᱨᱟ ᱨᱟᱢᱫᱤᱠ ᱱᱤᱣᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱᱡ ᱛᱷᱚᱝᱜᱚᱱ ᱫᱟᱫᱩ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱤᱝᱠᱮᱱᱟ ᱦᱟᱥᱤᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱤᱱ ᱥᱚᱯᱤ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱡᱤᱜᱨᱮᱞ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱥᱤᱠ ᱥᱟᱝᱥᱤᱱ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱜᱴᱩᱵ ᱡᱮᱨᱥᱤᱠ ᱠᱟᱨ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟᱞ ᱦᱟᱢᱚ ᱭᱮᱡᱩᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱭᱤᱝ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱥᱟᱜᱴᱩᱵ ᱡᱮᱨᱥᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱯᱟᱨᱛ ᱛᱟ ᱠᱷᱨᱪᱩ ᱥᱟᱪᱟ ᱛᱟᱜ ᱵᱟᱢᱞ ᱛᱟᱜ ᱞᱤᱥᱤᱠ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱛᱷᱟᱠᱪᱷᱞ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱵᱟᱢᱞ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱭᱤᱝ ᱨᱟᱝᱜ ᱞᱟᱜᱷᱤ ᱡᱚᱞᱤᱱ ᱫᱮᱛᱮᱱᱤ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱡᱟᱛᱷᱱᱩᱜ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩᱡ ᱴᱮᱱ ᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱭᱤᱝ ᱦᱟᱥᱤᱝ ᱭᱟᱜᱯᱩᱨᱮᱞ ᱱᱟᱛᱩ ᱨᱟᱝᱜ ᱢᱟᱝᱥᱩᱠ ᱵᱟᱢᱞ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱟᱨᱡᱤᱱᱛ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱨᱟᱝᱟ ᱞᱤᱠᱟᱱ ᱞᱤᱜᱤᱱ ᱡᱩᱜᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱤᱝ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱨᱫᱤᱱ ᱪᱷᱟᱢᱞᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱥᱚᱨᱞᱤ ᱱᱤᱜᱟ ᱟᱥᱤᱠᱪᱩᱜ ᱭᱤᱞ ᱢᱟᱛᱷᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱜᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱟᱨᱡᱤᱱᱛ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱟᱣ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱢᱟᱝᱯᱩᱡ ᱛᱷᱟᱠᱪᱮ ᱚᱱᱚ ᱫᱮ ᱤᱝ ᱦᱟᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱠᱣᱟᱡᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱮᱥᱤᱜ ᱜᱚᱝᱜᱚᱨ ᱛᱚᱱᱥᱢ ᱱᱮ ᱱᱮᱡᱚ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱥᱟᱨᱡᱟ ᱨᱟ ᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟ ᱥᱤᱜᱞᱩ ᱥᱮᱠᱤᱯ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟ ᱜᱟᱱᱴᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱᱤᱜᱤᱱ ᱠᱟᱡᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱪᱤᱠᱤᱯ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱮᱢᱩ
3: ᱟᱨᱱᱤ ᱦᱟᱝ ᱛᱩᱭᱤᱱ ᱪᱤᱠᱛᱟᱢ ᱡᱟ ᱠᱟᱱᱡᱩᱱᱥ ཅང དེ ངེ